90.4 KLE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

प्रार्थना अभवत। इस हफ्ते में हम एक गाने का आधार लेकर संस्कृत सीख रहे हैं। आज हम गाने का दूसरा पद गाएंगे। गाना देशभक्ति से ओतप्रोत है। गाना सुनते सुनते आप गाने लगेंगे और संस्कृत सुनते सुनते संस्कृत बोलने लगेंगे। आगच्छन्तु संस्कृतं श्रुण्मः संस्कृतं वदामः। अद्य सहायिका रूपेण मया सह मम सखी मञ्जरी भगिनी अस्ति। गीतस्य द्वितीयं पदं गायामः।

ऐसे बेबस दुखी लोगों को देखकर के दिल दहल जाता है, लेकिन आखिर हर इंसान को किसी न किसी सहारे दाता की जरूरत तो होती है ना। ऐसे व्यक्ति जिसके ऊर में दया का झरना नित निरंतर बहता हो, जो दयालु और कृपालु हो, उदार हृदय और खुले हाथों से मदद देता हो। सचमुच ऐसे दयामूर्ति व्यक्ति दयालुता के परम गुण से भरपूर होते हैं। दयालुता अर्थात गरीब असहाय दुर्बल को मदद करना या उन पर कृपा दृष्टि रखना, विवश व्यक्ति पर रहम करना, संकट या विपदा में फंसे व्यक्ति को सहायता देकर बचाना भी दयालुता है। दयालुता महात्मा के हृदय का बड़ा मीठा स्वभाव होता है। इस महान गुण से मानव जीव जंतु प्राणी मात्र का मित्र बन जाता है और सृष्टि से अप्रत्यक्ष रूप से दुआएं पाता है। ये गुण निर्बल और असहाय का उद्धार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे दयालु व्यक्ति परोपकारी बन जाता है। जिसे मानव की सोई हुई चेतना जागती है और हृदय से मानवता और सहृदयता जन्म लेती है। वास्तव में दया जैसा मानव धर्म नहीं, इसलिए तो कहा गया है दया धर्म का मूल है। दया मानव को दानव से देव बनाती है। मानव धरती पर सृष्टि में प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, बलशाली और बुद्धिशाली है। अतः सब पर दया करना मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। दयालुता से इंसान के साथ प्राणी जगत से अपनेपन की भावना पैदा होती है, जो अपने पराए का भेद बुलाती है। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन खिलाना, निर्वस्त्र को कपड़े देना आदि दया ही है। अपराधी को अपराध करने से छुड़ाना भी दया है, तथा लक्ष्य से भटके दुराचारी को सन्मार्ग दिखाना सबसे बड़ी दया है। भारत की माटी से अनेक दयालु संत महात्माओं का जन्म हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के एकनाथ महान दयालु थे, जिन्होंने शिव के अभिषेक का गंगाजल प्यासे गधे को पिलाकर दयालुता दिखाई। अतः दयालुता को धारण कीजिए और मानव धर्म का पालन कीजिए। ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

0: वेणुधोनी 90.4 FM KLE गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है, ये योजना पहली सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले

0: कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
2: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। नवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जांच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
4: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
1: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3%

0: की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दो दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केउंझर और मयूरभंज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच, सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा, बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू, ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणु धोनी 90.4 FM के LE कनसू।
5: ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನವ ಹಾಗೂ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಆದಾಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ, ಕನಸಿನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸುಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವ, ಉದ್ಯಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ದಿನದ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ಎಂಪವರ್ 365 ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಕಂಪನಿಯವರೆಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9513519666. ಗಿಕೋನಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ.
6: ಅವಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯು ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ತಂದಿದೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಮಹೋತ್ಸವ. ಸುಂದರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಬರಿ 100% ರಿಯಾಯಿತಿ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ಮಾತ್ರ. ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಸರಾಫ್ ಮತ್ತು ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಸುವರ್ಣಮಯಿ ಶುದ್ಧತೆಯ ವೈಭವಶಾಲಿ ಪರಂಪರೆ. ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯ.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 एफएम केएलई कनसू। भाषा संगम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो कि जनरल न्यूट्रिशन है। दोस्तों, हम जो खाते हैं, हमारे प्लेट में जो खाना रहता है वो कितना हेल्दी है हमें पता नहीं रहता, जबकि दिन भर में हम काफी चीजें खाते रहते हैं, बट हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है वो भी हम जानते नहीं है। तो इसी के बारे में हमें ये सभी बातें समझाने के लिए मेरे स्टूडियो में मौजूद है सुप्रजा यस, न्यूट्रिशनिस्ट एंड होलिस्टिक हेल्थ कोच है। उसी के साथ साथ वो ओन योर हेल्थ की फाउंडर भी है। मैडम वेणुधरन के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच मनीषा जी।
0: आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली डेली रूटीन में हमें काफी हम खाते रहते हैं, कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं, बट कौन सी चीज से या फिर क्या हम खाते हैं उससे हमें कितने हेल्दी बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में हम जानते नहीं है। हालांकि सब लोग बोलते हैं कि आपको प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम करने चाहिए, बट वो कौन से फल में रहे या फिर वेजिटेबल में रहे, वो कौन से इसमें हमें क्या क्या मिलता है वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहता। तो ओवरऑल हम जनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो जनरल न्यूट्रिशन मीन्स क्या रहता है?
1: तो जैसे आपने बोला, न्यूट्रिशन जो है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत डीप है, पर लोगों को यही लगता है कि न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कि कम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, इतना ही लोगों को समझ में आता है। और ये इसके लिए भी होता है क्योंकि हम इतना एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं कि लो कार्ब्स मतलब कम कार्ब्स, हाई प्रोटीन, लो फैट या कीटो डाइट या ये वो, मतलब अलग अलग अलग अलग तरीके का ना इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है इन चीजों के बारे में। बट एक्चुअली जो न्यूट्रिशन की बात करें तो ब्रॉडली कैसे बोलते हैं कि हमारा जो खाना है, जो बॉडी में जो जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, इन पांच चीजों के बारे में मेनली फोकस रहता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स खराब है क्योंकि उससे मोटापा होता है।
0: एग्जैक्टली
1: बट लोग ये नहीं समझते हैं कि जो हमारे कण, हमारे बॉडी में जो सेल्स है, हर एक सेल को जो ऊर्जा या एनर्जी का जो जरूरत है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। तो हमारा जो बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट खराब नहीं है, कार्बोहाइड्रेट हमें जरूरी है। हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है या जो क्षमता है, वो जो भी खाना होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, मतलब उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो इवेंचुअली मतलब एट द एंड वो जाके कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में ही होता है। क्योंकि बॉडी का जो अब्सॉर्प्शन है, जैसे मैंने बोला हर सेल को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ग्लूकोज होती है। तो कोई भी खाना जो खाते हैं जब ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके सेल के अंदर जाके वो ऊर्जा पैदा करती है। तो वही ऊर्जा से हमें अपना सारा एक्टिविटीज जो काम है वो सब हम कर सकते हैं। तो कार्ब्स आर बैड, कि कार्ब्स खराब है, ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। कार्ब्स हमारा जरूरी है, हमारे लिए फ्यूल है, हमारे लिए एनर्जी सोर्स है। कार्ब्स जो सबसे एफिशिएंट मतलब जो सबसे ईजिली जो हमें बॉडी को मिल जाता है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। इसके लिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो बॉडी यूज करती है, जब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते हैं तो नेक्स्ट जो होता है वो फैट होता है, जिसको बॉडी बर्न करती है।
0: अच्छा,
1: बट फैट में क्या है, जो कैलोरीज है, जैसे बहुत लोग समझते हैं ये टर्म कैलोरीज, राइट? तो कैलोरीज मतलब अगेन कैलोरी जब ब्रेक डाउन का मतलब होता है एनर्जी देना, ग्लूकोज देना। तो कार्ब्स में जो हर एक ग्राम पे एक कार्बोहाइड्रेट का वो 4 कैलोरीज आता है, बट वही चीज 1 ग्राम फैट का अपने को ऑलमोस्ट 9 कैलोरीज आता है। तो बॉडी का जो रिजर्व जो रहता है ना वो फैट होता है। अगर बॉडी कार्ब्स नहीं मिलता है, जो इजिली वो नहीं ले पाता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो फिर वो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो होल कॉन्सेप्ट है कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन जो है वो बहुत मेहनत के साथ बॉडी उसको ब्रेक डाउन कर पाता है। प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी अलग से रिक्वायरमेंट है। तो प्रोटीन बहुत इनएफिशिएंट मतलब बिल्कुल ही लास्ट, और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास, अगर बॉडी को ऐसा लगता है तब जाके वो फिर प्रोटीन को यूज करता है एनर्जी के लिए। क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसके लिए फोकस हमारा होना चाहिए कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, ना कि, हाँ ये एक चीज है कि एक्स्ट्रा कैलोरीज किसी भी फॉर्म में हम लोग खाएं, एक्स्ट्रा जो बॉडी को जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा हो वो जाके फैट के जैसे स्टोर होता है।
0: अच्छा,
1: तो इसके लिए कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स को इक्वेट नहीं कर सकते, मतलब दोनों सेम नहीं है। कैलोरीज जो है वो जो खाना होता है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है और उससे जो एनर्जी पैदा होती है उसको कैलोरीज में कन्वर्ट होता है, बट खाना जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ऐसे करके अलग अलग पदार्थ होते हैं उसमें। और ये भी लोगों को लगता है कि राइस खाने से हम मोटा होते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, 100%. और आलू खाने से हम ठीक नहीं है क्योंकि आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। यू नो, ये भी बहुत सारा एक मिथ है, लोगों को लगता है कि ये गलत है, बट एक्चुअली देखा जाए तो कुदरत ने ना कभी भी खाने को एक, जैसे हमारा बॉडी भी जैसा है कि वो पूरा अलग अलग पार्ट से जुड़ा हुआ है, कोई एक ऐसा लिवर अलग से, हार्ट अलग से नहीं है, सब जॉइंट है। वैसे ही कुदरत ने भी खाने को, जैसे चावल हो गया या आलू हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट तो है बट उसके साथ साथ और भी पौष्टिक पदार्थ है उसके अंदर, तो इसे ब्रेक डाउन करके कभी भी खाने को प्रोटीन फैट ऐसा देखना बहुत गलत हो जाता है। हमें ये फोकस रहना चाहिए न्यूट्रिशन के स्टैंड पॉइंट से कि भाई मैं कितना एक्सेस में खा रहा हूँ या खा रही हूँ, वो एक फोकस रहना चाहिए कि ज्यादा न खाए, क्योंकि जैसे मैंने बोला एक्स्ट्रा जो भी आता है बॉडी के अंदर वो फैट में स्टोर होता है। तो ये ध्यान में रखे कि जो भी मैं खाऊं जितना कुदरती तरीके से खाऊं उतना अच्छा है मेरे लिए। इसलिए फ्रूट्स,
0: अच्छा
1: फ्रूट जो आता है वो एक्चुअली, फ्रूट देखा जाए तो मीठा रहता है टिपिकली जो है, जैसे सेब खा लिया तो सेब में फाइबर बहुत सारा है। सेब एक्चुअली फ्रूट जो है वो प्योर शुगर्स है, मतलब वो बहुत जल्दी ऐसा ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, बट उसके साथ जैसे मैंने बोला फाइबर है, तो फाइबर के साथ साथ बहुत सारे जो बाकी न्यूट्रिएंट्स या बाकी जो पौष्टिक पदार्थ है वो भी जुड़े हुए रहते हैं।
0: करेक्ट।
1: तो हम एप्पल ज्यादा नहीं खा सकते या कोई भी फ्रूट ना एक या दो खा सकते, उससे ज्यादा नहीं खा सकते। ओवर ईटिंग जो बोलते हैं ना, हम इन कुदरती पदार्थों से हम लोगों को ओवर ईटिंग होता नहीं है। ओवर ईटिंग होता है जब हम लोग कुछ मैनमेड कुछ निकाल देते हैं, कुछ चीजें इसमें से ऐड कर लेते हैं, तो उसके वजह से क्या है कि हमारा जो वायरिंग है
0: अच्छा
1: वो थोड़ा चेंज होके हमें लगता है कि हम ज्यादा खा लेते हैं। उस तरीके से हमारा कैलोरीज जो है वो बढ़ जाता है और हमें ये लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स खराब है, प्रोटीन खराब है, बट फोकस सिर्फ ये रहना चाहिए कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये सारे खाने में होता है। जैसे मैंने बोला आलू में भी प्रोटीन होता है, फैट भी होता है।
0: अच्छा,
1: राइस खराब नहीं है बट जिस तरीके का राइस खाते हैं हम लोग, इतना पॉलिश्ड, इतना वाइट, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रख के खाने को तोड़ के ना खाने, बट जैसा हमारा प्लेट होता है कि दाल हो गया, सब्जी हो गया, चावल हो गया, तो ये थोड़ा अच्छे से मात्रा में हम लोग बैलेंस डाइट जो बोलते हैं उस हिसाब से अगर हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे खाए, ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए या पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए, बट वो सब जितना कम कर सकते उतना अच्छा है, बट नेचुरली जो खाना बनता है घर के अंदर, जो पौष्टिक मम्मियाँ या फिर दादियाँ जो घर पे बनाती है या हम खुद जो बनाते हैं, मतलब नॉट जस्ट वुमेन बट हाँ प्रैक्टिकली जो बहुत सारे आजकल मर्द भी खाना अच्छे से बनाते हैं, तो घर का खाना होल तरीके से, बैलेंस तरीके से, कि दिन में फल भी हो गया, वेजिटेबल्स भी हो गए, दाल चावल, यू नो, ऐसे नॉर्मल तरीके से अगर खाना रेगुलरली खाते रहे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये ब्रेकडाउन जो हम लोग बात करते हैं इसका जरूरत नहीं पड़ता है।
0: करेक्ट। अभी काफी अच्छी तरह से आपने समझाया है, बट अभी कैसे हुआ है, जैसे आपने बताया कि अलग अलग टाइप के डाइट आए हैं और एक फैशन की तरह लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उसके साइड इफेक्ट्स उनको पता नहीं रहेंगे शायद, या फिर उतनी डीप स्टडी उन्होंने की नहीं होगी, बट इसको लेके, मतलब अभी जो फैशन या ट्रेंड चल रहे हैं अलग अलग डाइट के, उसको लेके कुछ साइड इफेक्ट्स भी उनको आगे चल के होंगे क्या?
1: डेफिनेटली। देखो, डाइट जो चीज है, वो वर्ड डाइट ही अगर देखा जाए कि लोगों को लगता है मैं डाइट करूंगा तो, या मैं डाइट करूंगी तो मेरा वेट लॉस होगा, लोग टिपिकली डाइट की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कैलोरीज कम करना है, बट डाइट जो है वो एक महीना दो महीना काम करता है। आप डाइट लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग आप खाना खाते हैं, बट आप डाइटिंग लाइफ लॉन्ग करते हैं क्या? कभी नहीं कर पाते हैं,
0: नहीं हो पाता। करेक्ट।
1: That is why diets do not work. इसलिए हम कभी भी डाइट करके, ये जो टर्म है डाइट जो है वो एवरी डे होना चाहिए, मतलब हमारा जो खाना है रेगुलर वो डाइट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि बदकिस्मती से ना डाइट को हमने एक ऐसा फैंसी वर्ड करके कर लिया है कि मैं ये डाइट कर रहा हूँ, मैं वो डाइट कर रही हूँ, मैं अलग अलग है, यू आर राइट कि मतलब बहुत सारे तरीके के डाइट है। मैं भी बचपन से, जब मैं बड़ी हो रही थी उस टाइम पे हम ये जीएम डाइट और एटकिंस डाइट ये कुछ कुछ चलता था कि एक दिन सिर्फ ये खाना चाहिए, एक दिन वो सिर्फ वो खाना चाहिए। अब ये सब टेम्पररी है, डाइट्स डू नॉट वर्क पूरा, मतलब जिंदगी भर आप नहीं कर पाते हो। फोकस, जैसे मैंने पहले भी बोला था, फोकस हमारा यही होना चाहिए कि मैं डेली हर मील जो मेरा है वो कितना पौष्टिकता से भरा है, कि उसमें सारे जो मुझे न्यूट्रिएंट्स, मेरे बॉडी को जो कुदरती तौर से जो न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत है, जो पौष्टिकता की ज़रूरत है, वो मुझे मिल रहा है। ये फोकस रहना चाहिए, ना कि मैं ये डाइट करूँ, क्योंकि बहुत सारे डाइट्स रिसर्च भी है कि लॉन्ग टर्म कुछ कुछ डाइट्स जैसे है उसमें डेफिशिएंसीज भी हो सकते हैं, फिर उसमें एक्सेस करने के वजह से, जैसे हाई फैट डाइट हो गया या लो कार्ब डाइट हो गया, यू नो हाई फैट डाइट में क्या है, लॉन्ग टर्म जैसे जाके एथरोस्क्लेरोसिस की, हार्ट के इश्यूज, बिकॉज फैट बहुत ज्यादा होता है बॉडी में। टेम्पररी इनिशियली जो है वो वेट लॉस होता है, बट एक टाइम के बाद रिसर्च आजकल निकलने लगा है कि हाई फैट डाइट्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, मतलब दिल की दौरे पड़ने का या एथरोस्क्लेरोसिस की, आर्टरीज में जाके क्लॉग होने का, फैट डिपॉजिट होने का, तो ये चांसेस ज्यादा है। तो लोग करते हैं डाइट्स, एक साल भी करते हैं, बट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं उसको छुपा के रखती है इन चीजों को। और हमारी बॉडी भी कैसा है ना, कि ये बहुत सहनशीलता है अपनी बॉडी में, वो इतना इजिली ब्रेक डाउन नहीं होता है, यू नो हमारी बॉडी जो है वो कोशिश करते रहता है कि मैं सब चीजों को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ूं। और इसके लिए हमारी जो बीमारियां है वो बाद में प्रकट होती है, कि इनिशियली जैसे ही खाते हैं वैसे ही बीमारी नहीं होती है।
0: करेक्ट।
1: एक थोड़े टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, कहीं ना कहीं छोटे छोटे छोटे छोटे होके फिर कुछ बड़ा बड़ा बीमारी जाके निकलता है, यू नो। तो डाइट्स कभी काम नहीं करता है। तो मेरे लोगों का यही कहना है, और मेरे प्रैक्टिस में भी मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि देखो मैं डाइट नहीं दूंगी आपको, आपका आज का जो खाना है, जो रोज आप खाते हो, उसको आप और सेहतमंद कैसे बना सकते हो। आप चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, बट उसी खाने की थाली को आप और सेहतमंद कैसे बना सकते हैं, ये हमारा फोकस होना चाहिए। ना कि अच्छा मैं लो फैट करूंगी या हाई फैट करूंगी, लो कार्ब करूंगी जिससे मेरा वेट लॉस होगा, या तो ऐसे बहुत सारे जो फैट डाइट्स जो बोलते हैं ना, कि इसमें मुझे तो विश्वास नहीं है। लोग करते हैं, लोगों को बेनिफिट होता है, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होता ही है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है, मतलब जिंदगी भर आप नहीं कर पाओगे। दूसरा जो है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होता है। तो बेस्ट मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आपका जो रोजमर्रा का खाना है, तीन वक्त आप खा रहे हो, तो वो तीन वक्त का खाना जो है उसको आप ज्यादा पौष्टिकता कैसे बनाए, क्योंकि बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो पौष्टिकता है, पौष्टिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका रिक्वायरमेंट है।
0: करेक्ट।
1: तो उसी पे फोकस हमारा होना चाहिए।
0: आज का जो टॉपिक है जनरल न्यूट्रिशन के बारे में, तो उसके लिए जो नॉर्मल लोग हैं जिनको किसी भी टाइप की बीमारी नहीं है, उन लोगों के लिए हम कैसे बताएं कि जैसे अभी अभी आपने बोला कि उनकी थाली अच्छे कैसे हो जाए, उस पर मैं काम करती हूँ, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे?
1: गुड क्वेश्चन। और ये जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स को भी जो फोकस नहीं रहता है, और ये एक वर्ड है फाइबर, जो फाइबर जो टर्म है ना, इसको क्या रेशा बोलते हैं। आप कोई भी पत्ते को आप फाड़ोगे तो एक स्ट्रिंग निकलता है एक, ना तो वो फाइबर होता है। आप एप्पल को जब चबाते हो तो वो जो बाइट एक होता है, एक जो आवाज आती है आपको क्रंच करके, वो फाइबर के वजह से है। तो ये जो है, ये हमारे खाने में मिसिंग है, जो रोजमर्रा का खाना है हमारा। क्योंकि जैसे मैंने बोला, राइस खराब नहीं है, व्हाइट राइस जिस तरह से हम लोग राइस को खाते हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। तो उसके वजह से क्या है, क्योंकि हम चावल को या अनाज में से पूरा उसका जो फाइबर और पौष्टिक तत्व है वो सब निकाल के हम लोग खा रहे हैं, तो इसके वजह से चावल, आज का जो हम चावल खा रहे हैं वो खराब हो रहा है। सदियों से, मतलब आप देखा जाए जनरेशन एंड जनरेशन से हमारा जो प्राइमरी खाना है वो चावल ही है। बट चावल के साथ साथ हम बहुत सारे और चीजें खाते थे, चावल हमारा इतना ज्यादा नहीं होता था। आज आप थाली में अगर किसी के भी देखो तो चावल ऑलमोस्ट 3/4 पोर्शन जो है वो चावल या बाकरी या रोटी या जो भी है, ज्वार हो, कुछ भी हो, ग्रेन हो जाता है, अन्न जो हो जाता है ना, तो वो ज्यादा होता है। और जो सब्जी हो गया, दाल हो गया, या कोई और भाजी हो गया, या जैसे यू नो ये स्प्राउट्स हो गए, ये सारी चीजें, चटनियां हो गई, तो ये सारी चीजें बिल्कुल, तरकारी जो है थाली में ना, तरकारियां कम हो गई हैं। तो हमें सिर्फ ये फोकस लाना है कि जो पुरानी तरीके से जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पहले जैसे खाते थे, उस पे थोड़ा फोकस रखें कि ज्यादा तरकारी लाए, भाजी तरकारी जो है, साग के पत्ते जैसे हरी पत्तियां की, पालक हो गया, शेपू हो गया, मेथी हो गया, रोज एक ना कोई ना कोई एक पत्ती किसी फॉर्म में, चटनी के फॉर्म में या रोटी के अंदर या फिर दाल में ऐसे मिला के खाओ। फिर एक फ्रूट तो एटलीस्ट एवरी डे, कोई भी फल जो सीजन में है वो कुछ ना डेली एक फ्रूट इंक्लूड करे, क्योंकि कुदरत जो ये कलर्स, कलरफुल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना, इसमें बहुत पौष्टिक तत्व है।
0: अच्छा,
1: ये पौष्टिक तत्व के वजह से ही ये कलर्स आ रहे हैं। तो जो लाल है, हरा है, पीला है, हम अगर फोकस इन चीजों पे करें तो फिर हमें ऑटोमेटिकली ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। रोज जो थाली है, तीन वक्त का खाना जो हमारा है, अगर इन थोड़ा कलर्स पे फोकस करें, ये जो फाइबर जो मैंने वर्ड यूज किया ना, जो रेशा होता है खाने के अंदर, इस पे अगर हम फोकस करें ना, तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली थाली जो है वो बेहतर होगा, हमारा जो सेहत है वो इम्प्रूव होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पिछले 30-40 साल में मैंने नोटिस करा है कि हमारा जो खाने में फाइबर निकल गया है, सब कुछ हम लोग बहुत रिफाइंड तरीके से खा रहे हैं।
0: Exactly.
1: तो उसके वजह से क्या है कि बीमारियां भी बहुत ज्यादा रिफाइन होके आ रही है। पहले डायबिटीज बहुत कम लोगों में होती थी, अभी डायबिटीज इज वेरी वेरी कॉमन, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड थर्ड पर्सन है यहाँ पे जो डायबिटीज है, मतलब यू नो दुनिया में इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। पॉपुलेशन में तो ज्यादा है ही है, तो पॉपुलेशन के साथ साथ बीमारी भी सबसे ज्यादा है।
0: Correct.
1: तो ये इसके लिए हुआ है, ना कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से, बाकी फाइबर निकाल दिया गया है हमारे खाने से। तो जो रोजमर्रा का खाना है उसको सेहतमंद बनाने के लिए फोकस ये करें कि फैट भी कट डाउन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, फैट के वजह से एक्स्ट्रा कैलोरीज आते हैं बॉडी में, तो हमारा फैट भी जो है वो कंजम्पशन जो हम खाने में जो लाते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि तले हुए खाने जो है कभी कभार हम लोग करते थे, कि मौसम बदल गया हो, बारिश हो रही है, थोड़े पकोड़े खा लिए।
0: हाँ।
1: आज क्या है, पकोड़े हम लोग स्नैक में हर रोज खाते हैं, पकोड़े समोसे चले, मतलब ये ना जो चलता ही रहता है। और दूसरा भी एक हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंज आ गया है कि बोर होता है तो हम लोग खाते हैं, कि और कुछ करने को नहीं है इसके लिए, चलो कुछ है खाते हैं, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है खाते हैं। हम लोग ना वो पूरा जो शिफ्ट हो गया है खाने की तरफ, खाने को हम लोग एक कंफर्ट की तरह देखते हैं, ना कि ऊर्जा या एनर्जी देने वाली चीज, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ही ज्यादा हम लोग खाने पे फोकस दे रहे हैं। तो जहां हम लोग शायद दो वक्त का खाना खाते थे, एक मुहावरा होता है ना कि दो वक्त की रोटी मिल जाए तो बहुत है, तो वो एक्चुअली दो वक्त ही जरूरी है बॉडी के लिए।
0: पर अभी इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है ना, तो लोगों को उतनी अहमियत नहीं रही है।
1: करेक्ट। तो खाना जो है, इंग्लिश में एक फ्रेज है जहाँ मैंने पढ़ा था कि हम लोग ओवरफेड है बट अंडर नरिश्ड है। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो खाना बहुत है, जैसे आपने बोला हर जगह देखो खाना तो मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ फॉर्म में मिल जाता है, बट जो बॉडी को जो नरिशमेंट है, जो पौष्टिकता मिलना है, वो नहीं मिल रही है, इसके लिए वी आर अंडर नरिश्ड, तभी हमको बीमारियां भी हो रही है, मोटापा भी हो रहा है, क्योंकि जो पौष्टिक तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, जो नहीं चाहिए वो मिल रहे हैं। जैसे एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं चाहिए अपने को, बट क्योंकि खाना इतना प्रोसेस्ड है तो एक्स्ट्रा कैलोरीज आ रहे हैं, और क्योंकि खाना इतना प्रोसेस्ड है जो बाकी के पौष्टिक तत्व जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, वो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें खाना ज्यादा है बट जो जरूरी है वो नहीं मिल रहा है, तो ओवरफेड बट अंडर नरिश्ड है, तो इसके लिए मोटापा, फिर बीमारियां एक के बाद एक, कुछ ना कुछ यू नो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सिर्फ दो चीजों पे मैं फोकस करूंगी कि एक फ्रूट एवरी डे, कि भले ही आप स्नैक में खा रहे हो वो पकोड़ा समोसा खाने के बजाय, आप एक फ्रूट ले आओ। दूसरा जो है कि साग के जो पत्ते हैं, एक हरी सब्जी या दाल में, कोई भी फॉर्म, चटनी फॉर्म में या पराठे में, किसी भी फॉर्म में आप साग के पत्ते लाएं, और जो चावल या रोटी का जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा कम करके तरकारी भाजी का जो क्वांटिटी है थोड़ा बढ़ा दे, और ऑटोमेटिकली अगर तेल को थोड़ा कम कर ले, रिफाइंड जो हम लोग तेल में जितना तले हुए पदार्थ, और फिर खाने में भी कितना ज्यादा तेल जो यूज होता है, तो वो प्योर फैट है, मतलब सिर्फ उसमें ना एक्स्ट्रा कैलोरीज है, तो हमें जरूरत नहीं है उतना, तो वो थोड़ा कम कर ले, तो ऑटोमेटिकली आप इसको हर मील में ये फोकस अगर लेके आएंगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप, तो पहले एक मील से स्टार्ट करें कि चलो ब्रेकफास्ट मेरा मैं और हेल्दी कैसे बनाऊं, वही पोहा खाओ बट पोहे में एक चार वेजिटेबल्स डाल के खाओ, थोड़े स्प्राउट्स डाल के खाओ, अगर वही पराठा खा रहे हो तो पराठे में तेल कम कर लो या घी मत डालो या बहुत कम घी में बनाओ, अच्छे से थोड़ा फिलिंग ज़्यादा रखो। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिससे हम जो डेली खाना है उसको हम सेहतमंद बना सकते हैं। तो ये फोकस एक वर्ड पे मैं बोलूंगी कि फाइबर, फाइबर पे अगर फोकस कर लो, जब भी खाना मुंह में जा रहा है इसमें फाइबर है क्या, ये अगर हमारे

0: दिमाग में बैठ गया ना, तो फिर हम हर एवरी डे इज अ डाइट ओनली।
1: मेरे ख्याल से फाइबर की जगह अभी प्रोटीन ने ली है, क्योंकि हर कोई प्रोटीन के पीछे पड़ा है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन वेट लॉस को आता है,
0: करेक्ट,
1: क्योंकि खाना बोले तो वेट लॉस करना या फिर वेट लॉस करने के लिए जो ट्राई करते रहते हैं उनके दिमाग में ये सभी भरा पड़ा रहता है कि डाइट करे या फिर ये डाइट ले ले, इसमें ये रहना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, ये सभी बातें सोचते हैं। बट जो हमारे अगर पेरेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो पौष्टिक अन्न जो खाया जाता है रोज़ का, जैसे आपने प्लेट के बारे में बताया, तो वो सभी उनके ज़माने से मतलब खाते आ रहे थे और वो चाहते थे कि बच्चे भी वही खाएं। बट अभी हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं तो हो नहीं पाता, बट अभी फिर से हमें पीछे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
0: थोड़ा एक लेवल पे देखो, हम हमारे परदादे के टाइम पे या दादा दादी के टाइम का लाइफस्टाइल नहीं है हमारा, वो भी एक प्रॉब्लम है ना।
1: करेक्ट,
0: तो उनका 80% खाने जैसा उनका था, अगर हम अपने में 80% भी लाए ना, जरूरी नहीं है कि 100% उनके जैसे ही खाना जरूरी है। हमें ऑब्वियसली जो बाकी जो चीजें हैं, जो बन रही है, जो बिक रही है वो, और उनके भी बिजनेसेस जो है, थोड़ा बढ़ावा देंगे हम, बट हमारे सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है। कि अगर हमारे सेहत बनी रहे तो फिर बाकी सब कुछ
1: 100%
0: अच्छा रहेगा, राइट।
1: करेक्ट,
0: तो इसके लिए तभी मैंने बोला ना, एक मील, आप कोई एक मील कि जो भी आपका सबसे इजीएस्ट हो आपके लिए, कि अगर लंच आपका आपको लगता है कि अभी बहुत अनहेल्दी हो रहा है, मैं ब्रेकफास्ट तो हेल्दी खाता हूँ कि डिनर मेरा लाइट ही रहता है। एक एक और भी कहावत है ना कि आप ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच
1: करेक्ट,
0: लाइक अ नॉर्मल मैन और डिनर लाइक अ पॉपर बोलते हैं, कि मतलब सबसे जो हल्का खाना होता है वो रात
1: रात
0: का
1: में
0: खाना
1: किया
0: होना
1: जाए।
0: चाहिए। और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी या पुरानी आदतें भी ऐसी है कि सनसेट से पहले खाने का जो है, आजकल उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे बोलते हैं ना, कि आप 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे आप फास्ट करो, तो वो बहुत पौराणिक टाइम से हमारे स्क्रिप्चर्स में भी बोला गया है, और जैसे अलग अलग रिलीजन्स में भी ये प्रैक्टिस है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं चाहिए। बट हम लोग रात के 12 बजे भी खाते हैं
1: खाते
0: क्योंकि
1: हैं
0: है, अवेलेबल है ऐसे।
1: है
0: तो ये थोड़े प्रैक्टिसेस, मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, कि कभी कभार कर लिया ठीक है, बट जो 80% ऑफ द टाइम आप जो हैबिट जो बिल्ड कर रहे हैं ना, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। कि हर वक्त का मेरा जो खाना है, अगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके मैं हेल्दी बनाती रहूं, तो फिर 80% ऑफ द टाइम मेरा हेल्थ अच्छा ही रहता है। एक 10-20% इधर उधर 19-20 होता है, बट फोकस यही होना चाहिए कि ज्यादा ना खाए, भूख लगे तब खाए। हम लोग जैसे मैंने बोला ना, आते जाते हम लोग खाते रहते हैं, ये ना करें। मतलब गाय भैंस चरते हैं, ऐसा चरते रहते हैं, चरते रहते हैं, और हम भी वैसे ही चर रहे हैं ना, कि आते
1: करेक्ट,
0: जाते खाते, बोलना नहीं चाहिए, बट यही आदतें हैं, दीज आर हैबिट्स जो बोलते हैं, यही हैबिट को हमें तोड़ना है। थोड़ा बहुत ब्रेक लेके कि भाई अच्छा ठीक है, लंच हो गया, उसके बाद जरूरी नहीं है कि स्नैक खाए, चाय के साथ समोसे बिस्किट, ये नहीं जरूरी है, बट आदत हो गई है तो वो आदत ना थोड़ा हेल्दी कैसे बनाए, एक फ्रूट ले आओ उस टाइम पे। तो चाय के साथ फ्रूट बहुत लोग नहीं खा पाते हैं, पर ठीक है, तो चाय थोड़ा कम कर लो, फ्रूट ऐड कर लो, तो यू नो थोड़े बहुत ये जो
1: थोड़े बहुत
0: हैबिट्स है,
1: चेंजेस करने
0: चेंजेस धीरे
1: चाहिए।
0: धीरे करके बिल्ड करेंगे ना, तो एक हैबिट बन जाएगा। तो फोकस यही होना चाहिए कि हेल्दी हैबिट कैसे हम बिल्ड करें। हर बार जैसे मैंने बोला, हर बार खाना मुंह में रखते हैं, सोचो कि ये फाइबर है, इसमें पौष्टिकता है, ये एक थॉट से अगर खाना खाए ना, दूसरा जो न्यूट्रिशन के स्टैंड पॉइंट से बहुत सारे, मैंने भी पढ़ा नहीं है, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, और अब जाके बहुत सारा रिसर्च आ रहा है कि हम जिस तरह से खाते हैं, सोचते नहीं है खाते टाइम, हम लोग डिस्ट्रैक्टेड है कि मतलब वहां टीवी चल रहा है या मोबाइल पे कुछ चल रहा है और हम लोग खाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बाकी चीजें जो है डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं और खाने पे फोकस निकल गया है। तो माइंडफुल ईटिंग जो है ना, उससे भी बॉडी में बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आपने बोला, मैं होलिस्टिक लेवल पे काम करती हूँ कि माइंड बॉडी कनेक्शन जो है वो बहुत पावरफुल है। तो खाना तो एक चीज है जो मेन फोकस रहता है, बट किस तरीके से खाते हैं, कितना चबा के खाते हैं। अक्षय कुमार बोलता है वो हर एक निवाला जो है वो 32 बार या 34 बार कुछ चबाता है, वो उतना सोचने का जरूरत नहीं है हमें, बट जो खाते हैं उसको थोड़ा अच्छे से चबा के खाए, क्योंकि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ मुंह से स्टार्ट होता है।
1: अच्छा,
0: इट डजंट डायरेक्ट, खाना इधर जाके पचता नहीं है, पचता है इवेंचुअली यहीं पे, बट जो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है ना, वो अपने जैसे ही हम खाना मुंह में रखते हैं वहां से स्टार्ट हो जाता है।
1: ओके,
0: तो इसके लिए चबाना बहुत जरूरी है, कि जितना ज्यादा चबाएंगे उतना और

0: ऑटोमेटिकली हमारा जो खाने का क्वांटिटी है वो कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी को अब्सॉर्प्शन जो पौष्टिक पदार्थ चाहिए वो अच्छे से वो अब्सॉर्ब कर सकता है। तो वो चबाने का, बचपन में मम्मियां बोलती थी ना या दादी बोलते थे, चबा चबा के खाओ अच्छे से। मेन रीजन ये है कि जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, जो पौष्टिक पदार्थ चाहिए, वो अच्छे से अब्सॉर्ब होता है, असिमिलेट होता है। तो इसके वजह से ध्यान से खाओ कि खाते टाइम भले ही 10 मिनट के लिए खा रहे हो, आप आधा घंटा खाने की जरूरत नहीं है, वो 10 मिनट जो है सिर्फ खाने पे फोकस रखो कि भाई मैं खाना। और वो भी एक होता है कि आप रिस्पेक्ट भी दे रहे हो खाने को, तो जब आप रिस्पेक्ट दे रहे हो खाने को, उसको फोकस में रख के खा रहे हो ना, तो आप अपने बॉडी को रिस्पेक्ट कर रहे हो कि भाई मेरे बॉडी के लिए ये, क्योंकि यही जो चीज है जो मुझे आज बैठ के बात कर रही हूँ या जो भी है मेरा सेहत है, तो ये इसके वजह से ही हो रहा है। तो इसको वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और वो जो एक माइंडफुलनेस जो बोलते हैं ना, वर्ड बहुत लोगों ने सुना होगा माइंडफुलनेस, तो इस माइंडफुलनेस के साथ खाने से थोड़ा उससे भी बॉडी में फर्क आता है, जिस तरह के अब्सॉर्प्शन होता है पौष्टिक आहार का जो है।
1: करेक्ट मैम, अभी तक हमारे प्लेट में क्या क्या खाना आता है, वो कैसे रहना चाहिए, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, बट प्लेट में आने से पहले वो जहाँ से आता है उनके लिए भी काफी कुछ बदलाव करने चाहिए, तभी वो हमें अच्छा मिलेगा, वो भी एक पॉइंट है, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो वहां तक हम जाना मतलब वो अलग ही टॉपिक हो जाता है, बट फिर भी जो खाना हम घर पे लेके आते हैं, मतलब रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उसको ज्यादातर पौष्टिकता में कैसे कन्वर्ट करें, उसके बारे में क्या बोलेंगे?
0: तो यू आर राइट, आजकल बहुत ज्यादा जो है हमें आइडिया भी नहीं है कि हमारा खाना किधर से आता है। पहले क्या, हम मार्केट जाते थे, ऑलमोस्ट हर दिन या हर दो दिन में फल सब्जी लेके आते थे। ये रोज का एक एक्टिविटी होता था। इससे भी क्या है, यू नो, एक एक्सरसाइज जैसा हो गया कि हम मार्केट तक जाए लेके आए। मुझे भी याद है, मैं बचपन में अपने डैडी के साथ मार्केट एक ही बाजार लगता था, और वो बाजार में जाके उस हफ्ते का जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो भी चाहिए वो लेके आने का। बट अभी तो हम लोगों को मिलता है कि न्यूजीलैंड से कुछ कुछ मिल जाता है, चिली से एप्पल्स मिल जाते हैं, कहीं और से कुछ और मिल जाता है। तो पर्सनली मैं तो ज्यादा लोगों को बोलती हूँ कि जो लोकली ग्रो होता है, कि जो, और सीजन की, जैसे आम का एक सीजन होता है, कुदरत ने आम को एक सीजन में इसके लिए बनाया है क्योंकि वो सीजन में हमारे लिए अच्छा है। वो सेब जो है वो ठंड के रीजन में ही ग्रो करता है और वो ठंड के मौसम में मिलता है क्योंकि वो उस मौसम के लिए अच्छा है। अब सेब हमें थ्रू आउट द ईयर मिलता है, हम कभी भी खा सकते हैं, बट उसको बॉडी में कैसे, अभी मैं तो बैठ के साइंटिस्ट नहीं हूं कि मैं बैठ के रिसर्च करूं कि मेरे बॉडी के अंदर समर में सेब खाने से क्या होता है, ये मुझे आइडिया नहीं है। बट मेरा ये मानना है एंड रिसर्च है कि लोकल जितना आप खाओ, कि जो सीजन में ग्रो कर रहा है जितना आप खाओ, और इतना ज्यादा है, वैसे तो बोलते हैं कि केमिकल फ्री खाना जितना खाओ उतना अच्छा है, बट केमिकल फ्री खाना मेरे लिए सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी जो होता है, जैसे मैंने बोला कि जो कुदरत देता है उसको उस तरीके से खाने का। तो केमिकल फ्री ना हो तो भी इतना इंश्योर करो आप कि आपको जो लोकल और सीजन जो मिल रहा है, कि जैसे आम समर में ही खाओ, ना कि आम अभी भी मिलता है, कहीं ना कहीं आप जाओ पाकिस्तान से आम आते हैं, मलेशिया से आम आते हैं, तो खरीद सकते हैं, बट ये सीजन नहीं है हमारे लिए खाने का, तो वो सीजन अनसीजनल जो है, जो सीजन में नहीं है, वो चीजें मत खाओ। अगर आप केमिकल फ्री खा सकते हो तो खाइए, बट जरूरी नहीं है कि उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आप लोकल और जो रीजनल और सीजनल खाना है। इससे क्या होता है, जैसे आपने बोला, जहां ग्रो कर रहा है, जो फार्मर उगा रहा है, जो किसान मेहनत कर रहा है, लोकली खाने से उसको भी बेनिफिट होता है कि हम यहाँ की जो उपजाऊ जमीन में, यहाँ की जो उगाव है, उस चीज को खाने से यहाँ के किसान को बेनिफिट होता है। और जितना मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि जितना आप मार्केट में जाके फ्रेश लेके आओ और फ्रेश बना के खाओ उतना अच्छा है, बट लोगों के पास टाइम नहीं है, सबके पास बहुत कन्वीनियंस जो एक चीज हो गया ना, कि कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, पैकेट से उठा के कभी भी कुछ भी बना के खा सकते हैं, ये चीजें थोड़ा कम करके फ्रेश थोड़ा बना, भले ही बना के रख लो, बट जितना हो सकता है घर पे बना हुआ खाना खाए। और जो लोकल और रीजनल जो खाना है कि इंडिया में जो मिलता है वो ठीक है, मतलब जैसे सेब यहाँ पे तो ग्रो नहीं करता है, वो आते हैं हिमाचल जम्मू से तो वो ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि समर में हम जाके कहीं और से कुछ कीवी लेके आए कि विटामिन सी के लिए कीवी खाना है। ग्वावा अभी सीजन में है, उसमें भी भर भर के विटामिन सी है। आंवला हमारे यहाँ पे काफी उगता है, उसमें भी भर भर के विटामिन सी है। नींबू है, तो जो लोकली मिलता है, जो नेचुरली हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स या जो फल और सब्जी और जो अनाज, ये हम लोग इंक्लूड करते रहेंगे डेली बेसिस पे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा जो है ये बेल्ट अपना जो है कर्नाटका जो है, ये अपने मिलेट्स के लिए बहुत फेमस है। बहुत सारे मतलब ट्रेडिशनली भी यहाँ पे रागी, जवार, जवार की बाकरी, रागी मुद्दे, ये सब खाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट भी हो गया है कि हम जो पुराने जमाने के जो अन्न होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, मिलेट्स जिसको 2023 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑल्सो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो ग्लोबली यू नो हर जगह मिलेट्स पे फोकस आ रहा है। तो अगर हम थोड़ा हमारे खाने में भी डेली बेसिस पे थोड़ा मिलेट्स अगर इंक्लूड करें, राइस को थोड़ा शिफ्ट करके मिलेट्स ले आए वापस से, मतलब पुराने तरीके से खाने लगे, तो वो भी सेहतमंद बहुत रहेगा।
1: आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही यूजफुल होगा हमारे लिसनर के लिए, और उसमें हमें भी काफी नॉलेज मिला, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपने समय निकाला उसके लिए थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मनीषा, इट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा लगा।
1: थैंक यू मैम। दोस्तों अभी तक हम सुप्रजा यस जी को सुन रहे थे जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है। जनरल न्यूट्रिशन के बारे में उन्होंने हमें काफ़ी कुछ जानकारी दे दी है जो हमें डेली रूटीन में हमें बहुत ही यूजफुल होने वाली है। कैसा था आज का एपिसोड मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके लिए नंबर है 9019904904। ये है केली वेणुधोनी 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार। बेळगावमधील केएलई बीएम कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटल आरोग्य क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट सेवा देत आहे। तुमच्या रोगाचे योग्य निदान करून आवश्यक असणारे सर्व उपचार तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून दिले जातील। केएलई बीएम कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटलचा मुख्य उद्देश रोगाचे निदान करणं आणि योग्य उपचार करणं, तुमच्या आरोग्याची काळजी घेणं हेच आमचे ध्येय। तुमच्या आरोग्याच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी आयुर्वेदिक उपचार घेण्यासाठी संपर्क करा केएलई बीएम कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटल आणि महाविद्यालय शहापूर बेळगाव। फोन नंबर 08312486286

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। दोस्तों अब देखो, मकर संक्रांति हो गई, होली भी हो गई, अब तो ऑफिशियली समर की शुरुआत हो चुकी है। भले ही हमारे शहर में उतनी तपती गर्मियां शुरू नहीं हुई है, पर गर्मियों का आगाज तो हो ही चुका है। तो सोचा चलो क्यों न वही घिसी पिटी बातें आपको बताई जाएं। अब मैं घिसी पिटी बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर समर की शुरुआत में या फिर हर एक्चुअली सीजन की शुरुआत में हम उस सीजन का एक स्पेशल शो बनाते हैं। विंटर हो तो विंटर स्पेशल, मॉनसून हो तो मॉनसून स्पेशल, अभी समर है तो समर स्पेशल शो मैं आपके लिए बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस गर्मियों में आप अपने आप को कैसे संभाल के रखें ताकि गर्मियों में आपको तकलीफ न हो। ये बातें तो आपको हमेशा आपके घर में आपके बड़े बताते हैं, दादी नानी मम्मी भी बताती है, आपको पता भी होगा, फिर भी ये मेरा सामाजिक फर्ज है कि ये बातें मैं आपके साथ शेयर करूं। चलो मजाक और बड़बड़ बहुत हो गई, शुरू करते हैं आज का शो और सुनाती हूँ आज के शो के कुछ पहले गाने, जिन्हें एंजॉय करके आप तुरंत लौट कर आइए। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

तो भाई गर्मी में ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो है पानी और दूसरी है हवा। अब ये तो हर सीजन में इम्पोर्टेंट होती है मुझे पता है, पर गर्मियों में पानी और हवा इन दो चीजों का महत्व दुगना चौगुना हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में हमें प्यास बहुत लगती है और प्यासे को जब पानी मिल जाए तो स्वर्ग का सुख मिल जाता है। तो हमेशा अपने साथ बोतल कैरी कीजिए जिसमें आप पानी भर के लेके जा सके। अगर फ्लास्क है आपके पास यानी हॉट एंड कोल्ड वाटर बॉटल है जिसमें गर्म का गर्म और ठंडा का ठंडा पानी रहता है तो वो बॉटल तो बेस्ट है। उसके अंदर मस्त कड़कड़ी ठंडा नहीं, मटके का अच्छा सा ठंडा सा पानी अगर आप डालकर अपने वो साथ लेकर चलेंगे तो आपको किसी भी गर्मी की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मटके का ठंडा पानी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्रिज का पानी बिल्कुल मत पीना। सबसे खराब अगर कुछ है तो वो है फ्रिज में ठंडा किया हुआ पानी। जो नेचुरल तरीके से ठंडा होता है वो पानी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे शरीर को नेचुरल ठंडक अच्छी लगती है। तो मटके का पानी पीजिए, बाहर निकलते समय अपने साथ बोतल कैरी कीजिए जिसमें आप अपने घर का पानी लेके जा सको। प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि प्लास्टिक प्लस गर्मी प्लस पानी इज इक्वल टू इन्विटेशन टू कैंसर। एक्चुअली प्लास्टिक को यूं ही हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए, पर स्पेशली गर्मियों में तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो पानी की बात हो गई, हवा की बात करेंगे कुछ गानों के बाद। आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु, और अभी तुरंत उठकर पहले एक ग्लास पानी पी लीजिए। हमेशा ही बी रिलैक्स में मैं चाय कॉफी की बातें करती हूँ, पर गर्मियों में ये चाय कॉफी अवॉइड करनी होगी।

अच्छा, हमको हमेशा ऐसा लगता है कि ठंडी चीजें हमारे शरीर को ठंडक देती है और गर्म चीजें हमारे शरीर को गर्माहट देती है, पर एक्चुअली साइंस में ऐसा नहीं होता। हम जो बर्फ और आइसक्रीम और ये सारी चीजें खाते हैं, कहा जाता है कि ये हमारे शरीर के लिए गर्म पड़ती है। भाई, हमें गर्मी में ठंडक का एहसास कराने वाली चीजें अच्छी लगती है, कभी कभार खा लो चलेगा। रोज अगर गर्मियों में आइसक्रीम खाओगे ना तो गला तो आपका पकड़ेगा ही, और गर्मियों में भी आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा संभाल कर रहिए। और हम शुगर केन जूस पीते हैं गर्मियों में, ठंडा ठंडा शुगर केन जूस हमें बहुत अच्छा लगता है, पर शुगर केन जूस की तासीर भी गर्म होती है, तो ज्यादा ना पिए। दिन में एक आध ग्लास या हफ्ते में दो चार ग्लास ठीक है, उससे ज्यादा अगर आप पियोगे तो आपके शरीर की गर्मी बढ़ेगी। गर्मियों में आप आम का पन्ना पी सकते हैं, कच्ची कैरी का पन्ना पी सकते हैं, ये हमारे शरीर को बहुत ठंडक देता है और हमारे शरीर को गर्मियों में होने वाले जो रोग होते हैं उनसे बचाने की ताकत रखता है, हमें लू नहीं लगेगी। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। और जो हम गर्मियों में बाहर से घर आते हैं और तेज पंखा चला के उसके नीचे बैठ जाते हैं ना, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं या कभी भी जिंदगी में आपने कोई स्पोर्ट खेला है तो आपको पता होगा, आपकी जो कोच है या जो टीचर आपको स्पोर्ट्स सिखाते थे वो हमेशा कहते थे कि जब भी खेल के आप निकलो तो अपना शरीर खुला मत छोड़ना, या नॉर्मल कपड़े पहनकर हम जब निकलते तो वो हमेशा डांटते है कि नहीं ऊपर एक जैकेट पहन लो। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है और आप तुरंत ही ठंडक में जाओगे तो ठंडे टेम्परेचर से अपनी बॉडी को सेट होने में टाइम लगता है और इसमें आपके शरीर की बहुत सारी एनर्जी जाती है, इसमें आपकी इम्यूनिटी भी डाउन हो सकती है। इसलिए बाहर से आकर आराम से एक जगह पर बैठ जाइए जहाँ पर नेचुरल हवा आती हो, धीरे धीरे आपका बॉडी टेम्परेचर नीचे गिरेगा और उसके बाद में आप पंखा चला सकते हो। बाहर से आकर तुरंत तेज पंखे में बैठोगे तो जो हम कहते हैं ना कि भाई डबल क्लाइमेट है उसकी वजह से हमारी तबीयत खराब हो गई, तो ऐसी तबीयत आपकी खराब हो जाएगी। बातें बहुत सारी होगी, अब थोड़े गाने सुनते हैं। सुनते रहिए KLEV 90.4 FM, be relaxed with RJ Swara.

भाई गर्मियों में ना रिलैक्स करने का तो मजा ही कुछ और होता है। और मस्त आमरस पूरी का खाना खाया हो, लंच किया हो, और फिर उसके बाद पंखे के नीचे जमीन पर चटाई डालकर या फिर तकिया डालकर जो नींद आती है, आपको क्या बताऊं। इसका मजा हम तब लेते थे जब हम बच्चे थे, क्योंकि हमें समर वेकेशंस होती थी। अब बड़े होने के बाद तो देर आर नो वेकेशंस, पर कभी कभार समर में किसी संडे को एंजॉय कर लीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, शरबत बनाइए और स्नैक्स खाइए, बातें कीजिए। पर समर में दोपहर को बाहर निकलना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है और धूप आपके शरीर को तो थकाती ही है पर आपके दिमाग को भी बहुत थका देती है। अपने आप को हाइड्रेट करते रहना बेहद जरूरी है, इसलिए छाव में रहिए, घर पर रहिए, आराम कीजिए दोपहर के समय में। सुबह और शाम को आप बाहर निकल सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। बातें तो जारी रहेंगी, गाने भी सुनेंगे, पर समर की बातें, अगर आपके पास भी समर की कोई टिप्स है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको पता ही है, फिर भी बता देती हूँ, 9019904904। मैं लौटती हूँ कुछ गानों के बाद, आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM।

गर्मियों में देखा है कुछ लोगों के ना दिमाग भी बहुत गर्म होते हैं। जिन लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ना, जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे उनके दिमाग का पारा भी बढ़ते रहता है। तो ऐसे लोगों से ना दूरी बनाए रखिए, क्योंकि धूप में अगर बाहर जाना हो तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं, पर इन लोगों का तापमान इतना बढ़ा हुआ होता है कि उनसे कोई भी सनस्क्रीन आपको नहीं बचा सकता। हाँ, पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, अपने सिर को ढका रखिएगा ताकि गर्मी आपके सिर पर ज्यादा ना लगे, और पूरे कपड़े पहनिएगा। अब आप कहोगे कि समर में तो यार, विंटर्स में और बारिश के मौसम में कहते हैं कि पूरे कपड़े पहनो, समर में भी पूरे कपड़े पहनने चाहिए, बट वो कपड़े सूती हो यानी कॉटन के कपड़े हो, और पूरे कपड़े हो गए तो टैनिंग कम होगी और गर्मी का एहसास भी कम होगा, ठंडक रहेगी, ठीक है ना। सुनते रहिए KLEV ध्वनि 90.4 FM, be relaxed with RJ Swara.

अरे वो गोला याद है जो आप बचपन में खाया करते थे? नानी मामा के घर जब आप जाते थे और वहाँ पे वो दोपहर को घंटी बजाता हुआ हाथ गाड़ी लेकर एक चाचा मामा आता था जो बर्फ को घिस के उसके चूरे को एक लकड़ी में लगा कर उसके ऊपर शरबत डालकर गोला बनाकर देता था। हाय वो याद है ना?

और इसीलिए दोस्तों मैंने फैसला किया कि फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूंगा।

समर में सनस्क्रीन लगाना अपने स्किन के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही अपनी आँखों को प्रोटेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए काला चश्मा जो है ना आपका, वो निकालिए, उसके ऊपर की धूल झटकी, उसे अच्छे से साफ कीजिए और उसको अपने आप जो बैग ऑफिस स्कूल लेके जाते हो उसमें रख दीजिए। आते जाते वक्त जब धूप हो तब काले चश्मे का इस्तेमाल कीजिए। काला चश्मा सिर्फ स्टाइल मारने के लिए या तस्वीरें खींचने के लिए नहीं होता, आपकी आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है।

0: अच्छा, समर हो, विंटर हो या कोई भी मौसम हो, एक चीज जो है जिसका आनंद आप किसी भी मौसम में ले सकते हैं, वो है आपके फ्रेंड्स और फैमिली की कंपनी। तो ऐसी कंपनी ढूंढिए जिसके साथ आपको बहुत मजा आता है, वक्त का पता नहीं चलता है, वैसे लोगों के साथ अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, फिर कोई भी मौसम हो उसकी तकलीफ आपको नहीं महसूस होगी। अपना ख्याल रखना, और उसी के साथ साथ ना आपके घर में, ऑफिस में, जहाँ कहीं पे भी खिड़की में, छज्जे पर, छत पर, जगह आपको मिले वहाँ पर एक कटोरे में पानी और कुछ दाने जरूर रखना, क्योंकि समर हमारे लिए जितना मुश्किल है उससे कई ज्यादा मुश्किल हमारे आसपास के पक्षियों के लिए है, हमारे आसपास के एनिमल्स के लिए है, पशुओं के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो अपने घर के कंपाउंड के बाहर, गेट पर, कहीं पर भी एक बकेट में पानी भर के रखना, कुछ खाने पीने की चीजें रख देना, ताकि स्ट्रीट्स पे जो गायें घूमती है, जो एनिमल्स घूमते हैं, जो कुत्ते घूमते हैं, बिल्लियां घूमती हैं, उनको खाना ढूंढने में दिक्कत ना हो, उनको पीने के लिए पानी मिल जाए। और मेरी खिड़की पर, मैं जहाँ पर पानी भर के रखती हूँ ना, वहाँ पर रोज दोपहर को दो तीन पंछी आते हैं, हम तो उनको बुलबुल कहते हैं, तो वो बुलबुल आती है और उन पानियों में डुबकी लगा कर पानी में खेलती है, मजे करती है, वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि भाई सिर्फ एक कटोरा ही पानी हमने भर के रखा है, पर वो कितना आनंद ले रही है इस पानी का। चुल्लू भर पानी किसी के लिए मजे की बात हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। तो अपने साथ साथ एनिमल्स और बर्ड्स का भी ख्याल रखिए। उनको तो हम टोपी नहीं पहना सकते, सनस्क्रीन नहीं लगा सकते, बस उनके लिए एक पानी की व्यवस्था कर दो, वो भी बहुत है। इसी के साथ इस समर को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और आसपास के पशु पक्षियों के साथ इस गरम गरम टाइम को एंजॉय कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और इस समर अपने फैमिली के साथ मस्त आमों का मजा लीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।
1: ಇದೀಗ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.
2: ಯೋಜಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುಷ್ ಅಭಿಯಾನ, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरू थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है यादों के बारात। हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

सोनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 KLE कनसूबे आप ट्यून है यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।